जब आज प्रभु को पयो जन्म तो राज गयाए अब मैं कथा संक्षेपते सबू कहत सुनाए दो कवि पाच दोहरा ठांड पयो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा कालपुर की देह मो कोट कृष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग टल सबके पंखत नेत सुरग पास रग भर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ए कथा सुनियर गावै दुख पावते निकट न आवै बिस्न भगत के फल होई आदगा छिव सके न कोई संभ सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुखदावन तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूर प्री ला लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तर सतद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को मांगते नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक अहम तेक न माने हो सिमरत शास्त्र वेद सवैव भेद कम एक न जाने श्री असपन कृपा तुमरी कर मैं

क्या नहीं कर तेरा करतन तेरा सर्व किश है जिस दे सो पावे सदा से सला तेरी नाम मन वसावे नाम जन के मन वसावा जे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनिया वस्या जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किया गुरु बिटाओ

0: Ai, grudica falsal, ai.
1: Satnam Shri Vahe. Shri Vahe Guruji. Tan so vila. Jit darshan karna. Pau balihari. Satgur charna. Ji ke date. प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवै प्रभ नाम तेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी
2: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना सकह टल गुर सेवी है अहंस सहज सुभाय दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हूँ मैं सिख सुख सामी नूर अरसह कुर सह झटी है तुझ दिखे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाह दैशा जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साह वाहिगुरु जी राग सूही छंत महला चौथा कर तीजा

के सूर शरार्दन स्वद सिद्धार्थ को संसमूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत कौन दिखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बन एक रति के मातिम तंग जल जल संग अनुपा तंग सरंग सवारी कोट तरंग करंग से को दत्त पवन के पवन को जात निवारी भारी भुजान के भूपली बेद न्यावत शीसन जात बचारी इति भई तो कहा भई भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश निशान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ बजान को सुंदर हिंसत ही है राज हजारे को अंत की धाम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक सिखा है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन मानस बान के पेखा है पवन आहार जति जतारु सब सुब चार हजार देखा है श्री भगवान भजे बन भूपत एक रति बन एक न लिखा है शुद्ध सपाह दुरंत दुबाह सुसास नादुर जान दलांगे भारी विमान परे मन पै कर पर पंख हले न हरेंगे तोर अरीन मोर वासन माते मतंगण मान मरेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलेंगे बीर उपार बड़े बीर यार विचार है सार की तार पछैया तोर देश मलिंद मुआसन मातिक जान के मान मलैया गाड़ गड़ान के तो नहारू सो बात नहीं चक चार नवैया साहेब श्री सब को शरणायको जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नेंद्र शास्त्र पूत भगवान जपांगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाव थपेंगे पुन पर तापन बार जा तो नौ पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न प्रैन जग सत्तर सब अवलोक चपेंगे मान इंद्र जिंदन रात पौ दौन तर लोक को राज करेंगे कोट इशनान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सती पत अंत पति संपात परांगे जे नार श्री पात के प्रसन्न है पागो ते नार प्रेरणा देह तरंगे कह भयो जो दो लोचन मूंद काय बैठ रहे मत ध्यान लगाए नात प्रियो लिए सास मंदन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिखेर सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो सच कहूं सुन ले हो सबै जिन प्रेम की उतन ही प्रपायो काहू ले पाहन पोच धरे सिरो काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पछाह कोशिश नमायो को बतान को पूजत है पासो को मृतान को पूजन तायो कुर क्रिया और जो सभी जागो श्री भगवान को पहेद न पायो को बतान को पूजत है पासो को मृतान को पूजन तायो कुर क्रिया और जो सभी जागो श्री भगवान को पहेद न पायो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाचो बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दैर इच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो पतपारा हमरे दोष सब तुम काबो आप हाथ दे मोह बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की राह प्यासा तुम चाड़ कोई और न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सत्र हमारे मारिया है आप खाद मुझे अबरिया मरण काल का त्रास न मरिया हो जो सदा हमारी पच्छा श्री आस तो जो करे हो रक्षा राख ले हो महराखण हाडे साहिब संस है प्यारे दीन बंद दस्तन के हंता तमहो परी चातर दास कंता काल पाए ब्रह्मा अवतराव काल पाए शिव जी अवतराव काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का पी आत्मा सा
जमन काल जो गीसव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार हता हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैतो जचन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सबन सुख दियो सत्रन को पालनो मत कियो कट कट के अंतर की जानतो भले बुरे की पीर पछानतो चीटी ते कुंतर असूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाने कट कट की पढ़ पढ़ की जाने जब कर कर करता राव प्रजा तर तब देह पा राव जब या कर करत हो कब हूँ तो मैं मृत देह तर सब हूँ जेते बदल श्रेष्ठ सब थारे आप अपनी बुझ उचारे तुम सब ही तेरा निरालम जानत भेद भेद अरालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नीला नाद संभव ताका मूढ़ उचारद भेदा हो जाको भेवन पावद भेदा ताको कर पाहन अनुमान तो महामूढ़ कछ भेद न जान तो महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चिन्ह न भेव

रत दीनी कहो फूल राजा हो बैठा हो कहो समुद भय शंकर कैठा हो सिगरी शरण दिखाई अचम पव आद जगत सुरु सुजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग हो दोट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दोट दुख है मरे पुरख जम पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारी जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा हो।

रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुड़ छाछब सकै न कोई। एक बार जंत मैं संभारा काल पास ते ताहु बारा जरना नाम तिहारु कहा। दर दुन दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हा दैल्य हो बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई। दुख दुख ते लिहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता। ग्रंथ करा पूर्ण सब राता। किल विक सकल देह को हरता। दुष्ट दुखियन को छ करता। श्री अस्तो जो जपै दे अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल। मन बांछत फल पा बैसो ई दुख नत सह ब्यापत कोई अड़ैल। सुने गुंग जो जाहि सुरस न पावई। सुने मूढ़ चित लाज चतुरता आवई। दुख दर्द भाव निकट नांग त्रिन नरके रहै। हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पण जाए अर्ध सहस पण तीन कह जाए। भाद्रव सुधी अष्टमी रब वारा। तीरुस तद्रव ग्रंथ सुधार सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंक तरे नहीं आने। ओ राम रहीम कुरान कुरान आने कह माते। एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जाने। ओ श्री अस्पान कृपा तुमरी कारु मैं न कहो सब तोहे बखाने। ओ दोहरा

आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार प्रिया शब्द का मणियाइया।

सारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मन हम सारे कह नानक मन मेरी सदा रहो हर नाले साथी साहिबा क्या नहीं करते रहे घर तो तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सब सनाह तेरी नाम वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नामे ना आधारो सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन अवसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुन हो संतो शब्दों प्यारो साचा नामे ना आधारो वाजी पंज शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजी काला जित कर धारिया पंज दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर पाया तू जिन कौ से नाम हर कह लागी कह नानक तै सुख होवा तित कर अणहद वाजी साती लिवै बिन देहन माणी देहन माणी नव बाज हो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया ए सुनो होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लेवा बाज हो क्या करे बेचारिया।

मान चाव पयो प्रव्यागम सुनियो हर मंगल गाओ सखी गो मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखी सोख दुख न व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पर जापे अनहद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त जुनि से पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नार श्लोक महले पहले के लिखे टुंडिया सरा।

विस्माद पान विस्माद अग्नि खेडा बिदानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सद लगे प्राणी।

जोगी सुन ध्यावन जे ते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख खबजे दे न कै विचार दे दे मंगे सहसा गुण सब करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खा

हम च आया हम च गया हम जमया हम च मुआ हम दिता हम च लाया हम च खटिया हम च गाया हम सचार कुड़ियार हम च पापन विचार हम च नर सुर गया।

पड़ गड्डी लदी है पड़ भरिए साथ पड़ पड़ गड़ी पाई है पड़ गड़िए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हो खार कूड़ कूड़े ने लग बिसरिया करतार किस नाल की चे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मार।

जे कहे तो कुबेर तिहुरत हो ए नानक पाह बाहर को रंग न सो भय बिच घूम चढ़ाई है सर।

0: कीर्तन करते हुए पूना बख्श दुनिया जी चल रही गुरबाणी लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा सत्कार योग ज्ञानी जी होना पासवाब जी सरवण करो जिन्हें भी सत्संगी गुरबाणी गुरु शब्द में जुड़े हो प्यार साहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी ज्यों पावै त्यों राख लै हम शरण प्रभाए राम राजे हम भूल बिगाड़ दिन रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए मत सुमत तेरा वास स्वामी हम जनता तू पुरख जनतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी

रे कुटुंब संग लोगा कोल सबाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

सब कुछ जान लो, सब तेरे बस तेरा कर पला, तेरे कर नंद बधाई तुझ कर मान मत तेरा अपना आप जर सर्व कला भरपूर।

कर्तव्य रंग प्रंग अनेक न जापन कर्तव्य अंदर जियो सबके जान ला सबके तेरे बस तेरा कर भला तेरे कार आनंद वधाई तुद कर माण मत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे।